ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी और आज युवाणी में होगा फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। 5:30 पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत और 6:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा 6:20 पर और 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे होगी संसद समीक्षा और 8:15 पर होंगे एल्बम सॉन्ग्स। 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा घूमर। रात्रि 9 बजे सुगम संगीत में आप सुनेंगे चंद गजलें और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। और आज सुबह 9:10 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। 9:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे और 9:40 पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण हेतु कैच द रेन अभियान के संबंध में अधीक्षण अभियंता PHED प्रोजेक्ट सर्किल नागौर गोगोलाव श्री प्यारा सिंह तंवर से मोहम्मद शरीफ छिपा की बातचीत। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे गाने नए तराने नए कार्यक्रम का। श्रोताओं ये थी कार्यक्रम आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह के 9 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। पीठ ने कहा कि वो पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राज्य में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी का काम तेजी से किया जा रहा है। तेल समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1,85,00,000 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 38,00,000 की ई केवाईसी अभी लंबित है। इनमें इंडेन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ई केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इसी मद्देनजर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जल्द ई केवाईसी करवाने की अपील की है। श्री गुप्ता ने बताया कि रोजाना लगभग 20,000 उपभोक्ता ई केवाईसी करा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिए जाने को कहा। साथ ही तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर FIR दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। श्री दिलावर ने घुमंतू परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम भेजने तथा वहां साइबर ठगी कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि विदेश पहुंचने पर युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उनसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और क्रिप्टो ठगी जैसे साइबर अपराध कराए जाते थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों के ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। प्रदेश भर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। 12 जून से 30 जुलाई तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 11,500 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 53,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए गए, वहीं 18,000 से अधिक नाम हस्तांतरण और 8,644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 1,32,000 से अधिक जन्म, मृत्यु और

0: प्रोजेक्ट सुलेख के तहत बच्चों को पूरे जिले में लगभग 20,000 बच्चों को लाभान्वित इससे अभी तक किया जा चुका है और पूरे जिले में हम इस तरह की 10,000 स्टडी बेंच देने का टारगेट है, जिसमें से लगभग 5,000 बेंचें अभी तक की जा चुकी हैं, बाकी 5,000 के लिए भी बातचीत चल रही है। ये विभिन्न स्कूलों में जाएंगी और बच्चों की हैंड राइटिंग उनका व्यक्तित्व का प्रमुख आस्पेक्ट होता है, उसको सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
1: प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज बरसात हुई। भरतपुर में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। बारा में देर रात अच्छी बरसात हुई। भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में कैच द रेन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय के इस अभियान में करौली जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिला प्रशासन के निर्देशन में जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पौधरोपण, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रणगमा तालाब, मामचारी बांध, पांचना बांध तथा जिले के अन्य तालाबों, एनीकटों और जल संरक्षण संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को वर्षा की प्रत्येक बूंद को संजोने और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार कर भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बांकी बैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूरेट पीजी 2026 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्रीराम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी श्रोता सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए

0: 5555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, भक्ति संगीत कार्यक्रम में पहली रचना आपने सुनी थी महेंद्र कपूर की गाई हुई। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की गाई ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की गाई भक्ति रचना। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, 9:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं वर्षा जल संरक्षण हेतु कैच द रेन अभियान के संबंध में अधीक्षण अभियंता PHED प्रोजेक्ट सर्किल नागौर गोगलाव श्री प्यारा सिंह तंवर से मोहम्मद शरीफ छिपा की बातचीत। प्रस्तुति अशोक कुमार गोयल की रहेगी।
1: जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद कीमती है, इसे संचित करके रखें। वर्षा जल संरक्षण को भी हमें सहज कर रखना है। इसी संदर्भ में श्रोताओं, आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रोजेक्ट नागौर के अधीक्षण अभियंता श्री PS तंवर साहब को। SC साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: SC साहब, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, लेकिन बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और भूजल के लगातार दोहन के कारण जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इसी उद्देश्य से पूरे देश में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, वर्षा जल को संजोएं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी हाँ, आपको पता है कि जल जो है बहुत ही अमूल्य चीज है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है और इसको हमें सहेज के रखना पड़ता है। ये प्राकृतिक संसाधन है, इसका मतलब इसको हम नया पैदा नहीं कर सकते। जो प्रकृति हमको देती है वही है हमारे पास में। तो प्रकृति जो हमें देती है वो एक सीमित मात्रा में है।
1: बिल्कुल।
2: अगर उसको ही हम बर्बाद कर देंगे तो फिर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। इसलिए जो प्रकृति हमें गिफ्ट दे रही है, जो ये उपहार दे रही है पानी के रूप में, इस पानी को पूरा संचय करें, इसको बर्बाद नहीं करें और इसको बचा के रखें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो इस पानी से वंचित नहीं रहें।
1: बिल्कुल सही बात है। राजस्थान जैसे कम बारिश वाले जो प्रदेश है जहां हम निवास करते हैं, वहां वर्षा जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान तो अपने देश का वो हिस्सा माना जाता है जहां पानी सबसे कम बरसता है। जो ये प्रकृति का वरदान है, जो वर्षा के रूप में बरसता है, पूरे देश के अंदर अगर सबसे कम कहीं बरसता है तो राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसके बरसने की, इसके गिरने की मात्रा सबसे कम है।
1: जी।
2: पर चूंकि हमें ये जो है अभिशाप हमारे इस भौगोलिक भूखंड को मिला था, तो हमारी पीढ़ियां सदैव से पानी के महत्व को समझती आई है और इसीलिए हमारे यहाँ आरंभ से ही पानी के संरक्षण के महत्व को समझा गया है। हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी वो पानी की एक एक बूंद को बचाने के महत्व को समझती थी, तालाबों का संरक्षण करती थी, तालाबों की साफ सफाई रखती थी, बावड़ियां खोदती थी, कुओं को रक्षा करती थी। और तो और, हमारे पश्चिम राजस्थान में हम देखते हैं कि छतों के पानी से, जो छत के ऊपर जो पानी गिरता है, उसको भी घर के अंदर सजो के टाके में रखा जाता है। खेतों के अंदर टाके बना के रखते थे तो बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखते थे, उसी से जीवन यापन होता था। परंतु आज अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ संसाधन हो गए, कोई पानी की मोटरें हो गई, कोई पानी के पाइपलाइन से घर घर पानी आ गया, तो आने वाली पीढ़ी और हम आज के समय में ये भूलते जा रहे हैं। तो आज के समय में इस क्षेत्र में जहां बारिश कम होती है वहां पे पानी का संरक्षण करने की, बरसात के पानी को बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, आपने सही बात बताई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबको अपनाना चाहिए। अगर हर परिवार अपने घर में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करे तो इससे क्या लाभ होंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब इससे बहुत लाभ है। बरसात का पानी जो है वह हमारे पास में प्रकृति का वरदान है और ये इसकी पानी की क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है और ये पानी शुद्ध है और इसकी क्वालिटी अच्छी है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और पानी जो है एक बहुमूल्य चीज है। आप जो पानी हम लेके आते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है।
1: जी जी।
2: तो इसलिए हर घर को पानी बचाना चाहिए, जहां पे भी संसाधन है बरसात का पानी को संरक्षित करके रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। ऐसे साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए कौन कौन से पारंपरिक और आधुनिक उपाय सबसे अधिक प्रभावी हैं?
2: हम हमारे क्षेत्र में ही देखते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो है नाड़ियां हैं, नाड़ियों में पानी का संरक्षण किया जाता है। इसके साथ ही तालाब हैं, तालाबों के अंदर भी पानी का संरक्षण किया जाता है। बावड़ियां हमारे यहाँ कई लोगों ने, पुराने समय में भी हमने देखा है हैं कि बावड़ियां शहरों के अंदर भी हैं, गांवों के अंदर भी हैं, वो बावड़ियां गहरे पानी तक आदमी के आम आदमी की पहुंच को सुनिश्चित करती थी। वो बावड़ियां हैं, तालाब हैं, नाड़ियां हैं, ये सब हमारे पास पुराने टाइम से है। और वर्षा के जल को संचय करने के लिए जो बरसाती टांके होते थे वो भी पुराने टाइम से हमारे यहाँ चले आए हुए, हमारी परंपरा रही है बरसात के पानी को संजो के रखना।
1: बिल्कुल सही बात है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे सुधारने के लिए आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है?
2: जी हाँ, अब आज के समय में जैसे मैंने कहा कि प्रकृति हमें ये वरदान पानी का दे रही है, पर प्रकृति के साथ जैसे जैसे हम भौतिक प्रगति करते जा रहे हैं, हमारे पास विद्युत के संसाधन हो गए, पंप को खींचने के संसाधन हो गए, सोलर बिजली हो गई हमारे पास में, तो नलकूप से हम पानी खींच खींच के भूजल के स्तर को लगातार नीचे ले जा रहे हैं। इसके क्या विपरीत परिणाम आने वाले भविष्य में होंगे उसका अंदाजा शायद हमें आज नहीं है, पर हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस दंश को भुगतना पड़ेगा। तो हमें अभी भी सचेत होने की जरूरत है कि भूजल का अत्यधिक दोहन हम ना करें और इसको हम जो है इसको रोकें।
1: बिल्कुल सही बात है। स्कूल हैं, सरकारी भवन हैं, सार्वजनिक संस्थान हैं, इनमें वर्षा जल संरक्षण को लेकर विभाग क्या प्रयास करता है? सर,
2: विभाग यही प्रयास करता है कि इसके लिए जो है ज्यादातर स्कूल्स के बच्चों को हम ये शिक्षा देते हैं ताकि वो ज्यादा महत्व समझें और आने वाली पीढ़ी अगर तैयार हो जाए, अगर इस बच्चे जो है किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो उस चीज को अमल में लाने के लिए अपने घर पे भी दबाव डालते हैं और गांव स्कूलों में बच्चों को देते हैं और सारे जो संस्थान हैं उन संस्थान में हम ये जो हमारी IEC एक्टिविटीज होती है उसके द्वारा ये प्रयास करते हैं कि वो अपने जो भवन है सरकारी भवन है एटलीस्ट उनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, जो बरसात का पानी सरकारी भवन की छत पे आता है उसको कहीं न कहीं संरक्षित किया जाए।
1: यानी खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं? सर
2: जी हाँ, जल जीवन मिशन में नागौर जिले में अगर देखा जाए तो हम नहरी पेयजल आपूर्ति को पूरे नागौर जिले, जो पूर्व में डीडवाना जिला भी होता था और नागौर और डीडवाना जिला जो है वो एक भाग होता था, तो नागौर लिफ्ट परियोजना जो है बीकानेर के नोखा दैया से नहर का इंदिरा गांधी नहर का पानी लेकर के घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए नागौर लिफ्ट परियोजना से हम घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना पे कार्य कर रहे हैं। गांव गांव तक पानी पहुंच चुका है और घर घर तक पानी पहुंचाने का भी करीबन 60-70% तक कार्य हो पूरा हो चुका है, बाकी कार्य है वो भी शीघ्र पूरा करेंगे और घर घर तक नहर के पेयजल की आपूर्ति होगी।
1: बिल्कुल सही बात है। ऐसे साहब, जल की गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी होती है उसको बनाए रखने के लिए विभाग क्या क्या कदम उठाता है, यानी आम नागरिक पानी की शुद्धता कैसे सुनिश्चित करे?
2: हाँ, नहरी पेयजल जो है वो फिल्टर्ड पानी होता है, उसके अंदर जो क्वालिटी या मिनरल्स की जो मात्रा है वह तो नियंत्रित रहती है, परंतु जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो शहरों में या गांवों में जलती हैं उसमें अगर कहीं प्रदूषण की संभावना है या वो चीज है तो वो क्लोरीन के स्तर को हम जो है डिलीवरी प्वाइंट तक भी नापने की कोशिश करते हैं और बाकी जो सप्लाई करते हैं उनको नापते हैं, और जहां नहरी पानी नहीं है और अगर ट्यूबवेल का पानी आता है तो उसके अंदर हमें अतिरिक्त जांच करने की आवश्यकता होती है कि उसके अंदर लवण कितने हैं, उसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, उसके अंदर फ्लोराइड तो नहीं है, उसके अंदर आर्सेनिक तो नहीं है, कई और तरह के टेस्ट वहां अलग से करने पड़ते हैं। और नहरी पानी चूंकि उसके अंदर और कोई मिनरल्स नहीं होते हैं तो वहां सिर्फ क्लोरीन की जांच करते हैं। हमारे PhD विभाग के अंदर लैब है और इस तरह जल जीवन मिशन के अंदर हमने कई जो महिला संगठन है या आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं हैं उनको हमने गांव स्तर पे स्वयं जो है पानी टेस्ट करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया है और उनको ये टूल किट्स भी ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं कि वो गांव के गांव में ही उस पानी की क्वालिटी को टेस्ट कर लें। तो ये विभाग और इसके लिए जागरूकता भी रखते हैं और कोई भी आदमी अगर अपना जो उसको पानी आपूर्ति हो रहा है उसको टेस्ट करवाना भी चाहता है तो हाँ, तो वो वहाँ गांव में FTK किट से कर ले और लैब है तो लैब से जांच करा के पुष्टि भी करा सकते हैं।
1: ऐसे साहब, गर्मी के मौसम में पानी की बर्बादी रोकने के लिए आप आम जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: मैं आम जनता को यही सलाह देता हूँ कि सरकार अगर मुफ्त में पानी दे रही है तो पानी की कीमत मुफ्त वाली नहीं है, पानी बहुत कीमती है, पानी को आप पैदा नहीं कर सकते, ये जो कुदरत की देन है। तो तो कुदरत की देन सीमित है, तो उसकी कीमत को हमें समझना पड़ेगा, इसको बर्बाद नहीं करना होगा और अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसको संजो के रखना पड़ेगा।
1: क्या वर्षा जल संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या इसमें जन भागीदारी जो है वो भी उतनी ही जरूरत है, उसकी आवश्यकता है?
2: देखिए, वर्षा जल संरक्षण के अंदर जनता की ज्यादा जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी तो आपकी सुविधा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, जो पाइपलाइन लगानी है या वो को पंप और हाउस बनाना है या नहर से पानी लाके देना है, वह काम तो सरकार कर सकती है
1: जी जी,
2: पर पानी बचाने का काम तो आमजन को स्वयं करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
2: उसके लिए सरकार जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सारी जो हमारी योजनाएं होती हैं तो वो यही प्रयास करते हैं कि सब लोग जाने, और इसके अंदर हम कई स्वयंसेवी संस्थाओं, कई बड़े बड़े उद्योग वाले जो लोग हैं उनसे भी मदद लेते हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि योजना है जिसमें कई लोग जो नागौर जिले के बड़े बड़े उद्यमी हैं वो अपने गांव में अपने क्षेत्र में आकर के वर्षा जल संरक्षण के लिए योगदान कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। घरेलू स्तर पर पानी बचाने के ऐसे कौन कौन से आसान उपाय हैं जिन्हें हर परिवार तुरंत अपना सकता है? ऐसे साहब
2: देखिए, पानी बचाने के लिए सबसे पहले तो ये जागरूकता जरूरी है कि पानी को मुझे बर्बाद नहीं करना है।
1: बिल्कुल,
2: अब छोटे छोटे उपाय बहुत हो सकते हैं। आप अपनी आदतों को देखें, क्या आप शेविंग करते वक्त नल खुला रख रहे हैं? क्या आप जो है स्नान कर रहे हैं तो पानी को बर्बाद कर रहे हैं क्या? आप अगर दो बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो चार बाल्टी क्यों वेस्ट कर रहे हैं?
1: बिल्कुल,
2: आप गार्डन में पानी दे रहे हैं तो कितना पानी देना है? अगर आपको पानी मिल रहा है और वो पूरा उसको वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी गड़बड़ है। गाड़ियों को धोने के लिए अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा जागरूक स्वयं होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए जल बचत को लेकर आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? ऐसी साहब,
2: मैं तो सिर्फ यही संदेश दूंगा कि पानी का मूल्य बहुत ज्यादा है। आपको मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब यह नहीं है, इस पानी की कीमत क्या है, इसको हिमालय से लेके आके 1200-1300 किलोमीटर दूर से इस पानी को लेके आया जा रहा है, कितने पंपिंग हो रही है, उस पंपिंग में कितनी बिजली जल रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितने लोग इसके अंदर लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो कॉस्ट आती है पर लीटर की वो क्या आती है वो उसका आपको अंदाजा नहीं है शायद। इसकी कीमत को समझिए और इसके महत्व को समझिए, और जो पानी आप बचा रहे हैं वो ये समझिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो पीएस तंवर साहब, ऐसे साहब, आज आपने वर्षा जल संरक्षण, जल बचत और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपसे फिर भेंट होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, हमारे को एक मौका दिया कि हम जनता को इस बात को, हमारी बात को पहुंचा पाएं कि जल संरक्षण कितना कीमती है।
1: जल है तो कल है, हर बूंद की रखवाली ही आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, और इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी वर्षा जल संरक्षण हेतु कैच द रेन अभियान के संबंध में अधीक्षण अभियंता पीएचईडी प्रोजेक्ट सर्किल नागौर गोगलाव श्री प्यारा सिंह तंवर से मोहम्मद शरीफ छिपा की बातचीत। प्रस्तुति थी अशोक कुमार गोयल की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई एक गैर फिल्मी गज़ल। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमिट चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमासोनी का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है फिल्म सागर से और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ट्रैक सॉन्ग। इसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के में आइए अब सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गाना, जिसे गाया है मुकेश ने, संगीत से संवारा है खयाम ने और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म संगम में मुकेश को। इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म कर्ज में किशोर कुमार और साथियों को। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए श्रोताओं, आप कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं निकाह फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने। संगीत से सजाया है रवि ने और गीतकार हैं हसन कमाल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10:30 हुए हैं। समय हो गया है हमारे कार्यक्रम गाने नए तराने नए का। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हमने किया है फिल्म लुका छिपी से, और इससे गाया है तुलसी कुमार और साथियों ने। गीतकार हैं कुमार वर्मा और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दर्शन रावल और असीस कौर को फिल्म लव यात्री में। इस गीत को लिखा था दर्शन रावल ने और संगीत दिया था लीजो जॉर्ज ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म का एंड की का ये गाना, जिसे गाया है मीत ब्रदर्स, फैट जॉर्ज दमाजी और अदिति सिंह शर्मा ने। गीतकार हैं कुमार।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म खूबसूरत का ये गाना, जिसे लिखा जिसे गाया है सुनिधि चौहान और रेशमी सतीश ने। गीतकार हैं इकराम राजस्थानी और संगीत दिया है स्नेहा खानवाकर ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म वांटेड का ये गाना, जिसे गाया है ऋषिकेश कामेकर और निकिता निगम ने। इसे संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और गीत लिखा है वाजिद शिविर अहमद ने।

श्रोताओं, ये गाना हमने लिया था फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। इसे गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

श्रोताओं, गाने नए तराने नए कार्यक्रम में ये है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म मिकी वायरस से। इसे गाया है अल्तमश फरीदी और शादाब फरीदी ने, और इस गीत को लिखा है मनोज यादव ने।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: कलामे मिर्जा गालिब, विनोद सहगल, मौसिकार जगजीत सिंह।

रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजें।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये नगमा आपने सुना। विविध भारती आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है रंग तरंग। सुबह की 11:14 हो चुके हैं। विविध भारती पर भूपेंद्र सिंह की आवाज गूंज रही है। ये जावेद, ये गुलजार साहब का गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए।

0: तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय
1: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि

0: ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। किशोर कुमार का दिन और इस कार्यक्रम में किशोर के कुछ उदास नगमे।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास गाने, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नव में, विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

किशोर कुमार के उदास नगमे अलग अलग संगीतकारों के साथ। फिल्म का नाम निशान, राजेश रोशन का संगीत।

0: यादें।
1: कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सीतारमण ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं विनियोग संख्या 3 विधेयक का उद्देश्य 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर किए गए खर्च की पूर्ति के लिए देश की संचित निधि से धनराशि के विनियोजन को अधिकृत करना है। इस बीच राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। हालांकि विपक्ष के विभिन्न मुद्दों को लेकर किए गए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने विदेश में रहने वाले भारतीयों तक राखियां समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। डाक विभाग ने किफायती और वाटरप्रूफ लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन लिफाफों के माध्यम से खाड़ी देशों को छोड़कर लगभग 100 देशों में राखियां भेजी जा सकती हैं। भीलवाड़ा डाक मंडल से अब तक 100 से अधिक राखियां विदेश भेजी जा चुकी हैं। डाक अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि इस बार सबसे अधिक राखियां ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही हैं। उन्होंने लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आज कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहल पर भविष्य की उड़ान के तहत ये आयोजन रखा गया है। इसमें जिला कलेक्टर कानाराम चयनित सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों से विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार दौसा जिले के मंडावर में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा 12 के अंता में 10, हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 9.6 और डीडवाना कुचामन के मकराना में 9 सेंटीमीटर पानी बरसा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पाली में कैच द रेन अभियान के तहत नगर निगम ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। अभियान के माध्यम से लोगों को बारिश का पानी अधिक से अधिक इकट्ठा करने और जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का संदेश दिया जा रहा है। नागरिकों से घरों, संस्थानों और सार्वजनिक

0: भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अपनाने की भी अपील की गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला कल आयोजित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने में सहायता करना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
3: गौरी जरा बती यासु नोजी मोरी मोरी।
2: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा 3 गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
3: चोरी चोरी चोरी।
2: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के 3 फेवरेट्स कौन से हैं।
3: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी, हे हे हे हे।

0: सब कली ओ गोरी गोरी कली मैं आया तेरी गली कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गली जरा टिम्बकू
1: काठमांडू गले वो
0: मैं हूँ लोहा चुंबक तू
1: ऐसे भला बच बच के रहू
0: गे गे गली जरा

0: क्या आपको यह अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गिगे गिगेली जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद है, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरू सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अब एक गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: जय गोपाल, जय गोविंदम, जय गोपाल, जय गोविंदम, जय गोपाल, जय

धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र जगत नारायण के छोड़ के संतो नगद नारायण।

0: నాచే కిషోర్ కుమార్
1: జరా సోచే కి జబ్ గానో కి లైవ్ రికార్డింగ్ హువా కర్తీ హోగీ తో కేసే మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ కోరస్ ఆర్ కిషోర్ దా కే సాథ్ కే సింగర్ సారా तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता है जो लिखती है कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं।

मासूर मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया। कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते बताइए।

0: baby. Hi, baby. Hi, baby.
1: Hi.
0: Honey, मैं तो bore हो गया.

एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते कि आप अपनी यूडलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि

0: किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग।
1: बलमा हाय और ये भी हक्का,
0: यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का बक्का।
1: और ये भी हक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, हर डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, हर डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
0: किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइए।

ना मुझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको बूम धाम बड़ा बड़ा बूम आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का पक्का दुनिया

जिसका नहीं तू वही तेरे नशे में झूमे, जिसका नहीं तू वही तेरे नशे में झूमे। तन के जो चले जग उसके कदम चूमे। अरे दूर फिटे मुंह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, भाग लगाया पक्का, ए भी हक्का हक्का पक्का, दुनिया पागल।

मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन। ओ सोनिया मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन। वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बंबई से कलकत्ता, चलते जाना दे के धक्का, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का।

भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप, मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इशार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गायन में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से जरूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा

0: एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर दा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएं। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

0: यार।
1: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
2: कहने लगा
0: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था भक्सर भारी,

0: हम मिस खम्बा बम्पी बम्पी बम्पी बम्प कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ दिल फेल हुआ हाय हाय रे
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलु होनोलु
2: कहाँ से पहुंचे और कहाँ चले गए हुनू लुलू कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना परिवार फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, ये उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

बातों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंगा गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनवाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाए हुए हैं? और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।

0: अरे भाई अरे भाई
1: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, अरे भाई निकल...

0: मत गा अरे भाई निकल के आ घर से अरे भाई निकल के आ घर।
1: क्या तो शानदार गाना है नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
0: फूंक फूंक कर

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और धर तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

हजार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा। एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में है और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखती हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म का नाम बताइएगा, और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240 168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदी

0: नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले एमएसएमई की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
4: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
5: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
6: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति

0: गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दरमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: ही सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
1: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: लग रही हो
1: जी।
0: सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
1: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
0: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब रुत आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
1: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
0: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह हैं वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
0: हाँ,
1: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
0: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
0: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
1: बिल्कुल। आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
0: संबंध खराब हो जाते हैं
1: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान के कच्चे कहावत है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें।
1: बिल्कुल।
0: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। उसकी आप जांचें, उसे परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
0: रखना पड़ता है।

0: कि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो
1: बिल्कुल
0: सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे एक से 21 होना।
1: अरे, 1 से 11 होना तो हमने सुना
0: हाँ,
1: है,
0: ये अलग
1: लेकिन
0: है।
1: 1 से 21 होना और भी बड़ी बात है।
0: बिल्कुल
1: तो चलिए, इस पर ही हमारे श्रोता, हमारी सखियों और सखा इस पर विचार भेजेंगे
0: बिल्कुल,
1: अपने,
0: वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं।
1: देखते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना
1: जो
0: जो
1: याद
0: हमें
1: रह
0: बिल्कुल
1: जाती
0: याद
1: हैं।
0: रह जाती है,
1: हाँ,
0: तो उसके
1: और
0: बारे
1: कई
0: में
1: बार
0: बात करें।
1: हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है, जब भी छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों
0: जी
1: की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं,
1: हाँ
0: क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक
1: हाँ
0: दूसरे के बारे में
1: लेकिन
0: जानना।
1: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर निबंध नहीं लिखे, है ना,
0: हाँ
1: कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये लिखे आपने
0: जी
1: क्या शरारत की, आपको याद है, या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: ये आप लिख सकते हैं
0: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप
1: बचपन।
0: किसी का भी,
1: हाँ
0: या अपने पोते पोतियों का
1: हाँ
0: बचपन,
1: या
0: कुछ भी
1: आपके
0: बता सकते
1: पड़ोस के
0: हैं।
1: बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है, उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल, और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात
1: इनके
0: करेंगे।
1: बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अब सावन,
0: को एंजॉय, ओ आनंद उठाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: चलें करें।
0: बिल्कुल।

0: गया है। और खैर, सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की
1: जी
0: फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती, कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति
1: बिल्कुल
0: के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं, या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें
1: बिल्कुल
0: हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं।
1: जी
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे, हम किस
1: जी
0: दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं, या उस तरीके की
0: हाँ,
1: चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही कहा
1: ऐसे
0: आपने
1: हादसे हो जाते हैं।
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं, वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें, या झूठे संदेश हैं, या संपादित तस्वीरें हैं, या पुराने वीडियो, या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है, तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता
1: बिल्कुल
0: है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे, या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे,
1: जी
0: लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं, उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है, वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर हो फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम
1: जी
0: इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के
1: बिल्कुल
0: मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है।
1: जी
0: इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें, और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं, उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है।
1: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है, और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनकी विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण

0: अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं।
1: हाँ,
0: इस कार्यक्रम में
1: गीत सुनते हैं।

0: कि आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो, सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की, और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आर्थिक अनुशासन से बंधा हुआ था, और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया, और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की, और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई, और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई, और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं, और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ
1: जी।
0: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी बिल्कुल। और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था, और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ, और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है, और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी, आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया, और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की,
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10।

0: पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती तुम चौंक गई ना?
3: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
2: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था, और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
3: जी

0: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
1: अरे बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
0: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
0: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
1: तो
0: सारे।
1: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की, तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं, और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं वो।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था, बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
0: भाई बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं, पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
1: और वही एक श्रोता लिखती है कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था, सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे, तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। अच्छा। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया करते थे,
0: बिल्कुल आराम से।
1: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है हमारी भी, लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
0: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चरपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी

0: याद है
1: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार
0: जी
1: हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं
0: डर
1: वो डर
0: जाते
1: जाते
0: हैं
1: हैं ना।
0: जी।
1: हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, तो ये दोनों बातें बता रही
0: अच्छा
1: है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी, और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया, और उसके
0: ओहो
1: कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं, और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए, और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का
0: जी
1: करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते
0: बिल्कुल
1: थे ना,
0: बिल्कुल
1: सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे,
0: हाँ, ये
1: 1 रुपए का,
0: बहुत
1: 50 पैसे का सिक्का, या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी
0: जी
1: कई
0: बिल्कुल
1: बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं
1: हाँ, शरारतें
0: जी
1: भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है,
0: जी
1: और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी। और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
1: शरारते तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना
0: बिल्कुल यही
1: हमारे,
0: करते हैं ना कि फिर
1: लेके
0: सबको मत लेके जाओ, एक आध सिर्फ एक
1: जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती,
0: कि हमें नहीं लेके जाया जा रहा है
1: हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे
0: जी
1: क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है।
0: बिल्कुल
1: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके, तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि
0: जी
1: वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
0: कभी
1: नहीं
0: कभी
1: दिया,
0: डांट भी पड़ी होगी, कभी
1: हाँ
0: कभी मार भी
1: मार भी
0: पड़ी
1: पड़ी
0: होगी
1: होगी।
0: जी। अच्छा
1: हाँ
0: मजाक नहीं, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने
1: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे, देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया बच्चे इतनी शरारत करने के बाद। जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे। उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
4: बिल्कुल,
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि 2 या 3 में पढ़ रहा था, गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और

0: बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतली अंदाज में कहा, भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया। जी
1: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं, घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था, तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था। और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना, और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना, या रंग बिरंग चौके जो है जेब में भर लेना। तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
0: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
1: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
1: हाँ,
0: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
1: हाँ हाँ, क्यों
0: तो
1: नहीं,
0: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
0: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार। तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
1: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है, 1 और 1 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब दो चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है?
1: हाँ।
0: और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है वो आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये।
1: हाँ,
0: पुराना ही मुहावरा है।
1: हाँ,
0: लेकिन हमने सुना कम है।
1: हाँ,
0: ये प्रयोग कम होता है,
1: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है, 1 से 21 होना,
0: जैसे
1: तो मतलब
0: कि 1 है 1 से सीधे हम उछल के 21 पहुंच गए।
1: हाँ,
0: यानी कि उन्नति कर ली हमने।
1: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना, या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना। व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
0: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना, या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यावहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहां संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वही 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है, तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है। आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी हैं हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
1: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
0: जी, बात तो सही कही आपने।
1: तो देखिए, हमारे एक श्रोता

0: हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोताओं ने,
1: अच्छा
0: हर मायने
1: मायने
0: में श्रेष्ठ हो, तब
1: जी
0: इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, एक से
1: जी
0: इक्कीस होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत,
1: जी
0: उसमें
1: शरारत
0: भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो लिखते हैं कि हमारी एक बेटी का भी यही हाल था। एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहाँ मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने
1: अच्छा
0: बच्चों से कहा
1: हाँ
0: कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन
1: ये
0: में किया
1: अक्सर ऐसा
0: करते
1: होता
0: थे।
1: है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक
0: जी
1: हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं।
0: जी
1: एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके, मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था। वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी हैं
0: वाकई
1: लिखी हैं,
0: बहुत आज मन
1: और
0: खुश
1: आज वो
0: हुआ।
1: एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो
1: जी
0: बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आती अभी देखिए, हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है। इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
4: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके, और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।

0: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले,
1: जी
0: उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना,
0: हाँ
1: फिर
0: जी
1: 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन
0: वाह यस,
1: 1955
0: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया। और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता है आपका?
0: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी
0: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं,
1: जी
0: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही
1: वाह वाह
0: हूँ,
1: वाह।
0: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। जब मैं 6-7 महीने की थी,
1: जी जी
0: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग
1: वाह वाह
0: बाहर
1: वाह।
0: देशों में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज ईयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये
1: वाह
0: सब
1: वाह,
0: जो है मैंने दिल्ली में किया।
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
0: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट, मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी, जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
1: बिल्कुल
0: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
1: बिल्कुल
0: फ्री में वो स्टूडेंट्स को, मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ
0: बिल्कुल,
1: इंडियन क्लासिक
0: कि
1: म्यूजिक, वो युवाओं के
0: एजुकेशन,
1: बीच।
0: हाँ
1: हाँ
0: एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
1: जी
0: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक, केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात है।
0: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
1: कल्चरल
0: विंटर्स,
1: हब।
0: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
1: त्रिवेणी
0: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में, मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर

0: जान, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था
1: बिल्कुल
0: हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसॉन, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बंबई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या बात
0: करूं।
1: है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने दिखाया है
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी, वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉरपोरेट गए थे। और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी। और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: हाँ,
0: चला गया। सुनते हैं।
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने
0: बिल्कुल
1: इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी, इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या, तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया, तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो सी
0: दैट, उस समय
1: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये एक क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
0: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
1: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू आईआईटी के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: और मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कॉम्पिटिशन के प्लेज नहीं होते थे, और दुर्गा पूजा,
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस, तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है। हाँ, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।

0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक से जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशन में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा,
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह, जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा?
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे,
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई, कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे
0: तो वो सीधी राह पर चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है, हाँ, क्या बात है।
1: हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेत्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं
0: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
1: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर दो साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
0: अच्छा।
1: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
0: क्योंकि
1: पापा, हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, कहते नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
0: आप यहाँ पढ़ो मत।
1: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक देके अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
0: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
1: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो
0: फिर मामला टल गया
1: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया
0: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
1: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
0: राइट,
1: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई, अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं,
0: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
1: फुल प्लेट, अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ जिसको मुझे बनाना है वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है
0: और ये बन गई,
1: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
0: हाँ,
1: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
0: क्या बात है, तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता
1: एक है। चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीर

0: रुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में, मतलब तो मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल की टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह, क्या प्यारी बात
0: तो
1: कही आपने।
0: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हौर ता हबे,
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते
0: जा
1: हैं।
0: हौर ता हबे।
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहां एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप
1: हूं।
0: हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन
1: कि
0: खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं माता
0: या
1: सरस्वती शारदा, जिसका
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है
0: बिल्कुल
1: और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल
1: ये सुनते हैं, ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर जी
0: शंकर जी
1: को।
0: को। हाँ
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं. आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं. पीछे की तरफ केमिस्ट्री है.
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है.
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन. और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया.
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी. और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी. वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी. सो आई वॉज सो मच इन लव विथ. और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में. फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था.
0: बिल्कुल.
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं. और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए. तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो. डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे. पर अभी एक्टिंग लो. तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई. एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में. अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी.
0: जी जी.
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे.
0: वाह वाह.
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी.
0: बिल्कुल.
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है. शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं. जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस. और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका. So it was a very difficult process, but then, like I said, ki I think no pain, no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी. क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी.
0: इससे पहले बना चुकी
1: थी. इससे पहले हाँ. और
0: नवाज थे उसमें?
1: नवाज था उसमें. और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है. तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स. तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में. उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे. नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से. हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट.
0: क्या हुआ था आपके साथ रोम में?
1: सुपर नेचुरल स्टोरी थी.
0: सुपर नेचुरल.
1: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस. खैर,

0: मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी। मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: ने। कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ईरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम,
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकेंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर
1: बाबा
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ,
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की, मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहां फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज
1: बिल्कुल।
0: इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश

प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे, और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो,
1: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ये ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: की और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके।

0: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
1: हाँ
0: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

सभी दोस्तों का स्वागत युवाणी प्रोग्राम में। साथ ही सलाम नमस्ते। आज आपके इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत जैसा कि हमेशा से होती आई है, करते हैं आज की बात से। और आज की बात का हमारा विषय है सोशल मीडिया और युवाओं में रील्स या शॉर्ट्स बनाने का जो क्रेज़ चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है और इसका सबसे बड़ा असर हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुलभता ने सोशल मीडिया का मंजर पूरी तरह से बदल दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लंबी वीडियो या तस्वीरों का दौर अब पीछे छूटता जा रहा है और इसकी जगह 15 से 60 सेकंड के छोटे छोटे वीडियो जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स इन्होंने ले ली है। आज का नौजवान इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को सिर्फ देख ही नहीं रहा है बल्कि इन्हें बनाने का क्रेज़ भी उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह है त्वरित प्रसिद्धि यानी कि इंस्टेंट फेम की चाहत, आसान क्रिएशन टूल्स, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का प्रदर्शन। और दोस्तों, ये जो रील्स शॉर्ट्स युवा बना रहे हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव तो ये होता है कि इससे कौशल विकास के साथ साथ सबको समान मौके मिलते हैं और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। लेकिन

इस क्रेज के बहुत से नकारात्मक पहलू और चिंताएं भी हैं, जिनमें समय की बर्बादी और ध्यान में कमी है, और साथ ही स्टंट और खतरनाक ट्रेंड्स। दोस्तों, इससे लोगों में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की संख्या युवाओं के आत्मसम्मान का पैमाना बनती जा रही है। कम व्यूज मिलने पर युवाओं में नाउम्मीदी, निराशा, अवसाद और एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट्स बनाना एक दो धारी तलवार की तरह है। ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो नौजवानों को पहचान, मंच और कमाई के अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसका उपयोग रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के साथ किया जाए। युवाओं को यह समझने की ज़रूरत है कि आभासी दुनिया यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड की प्रसिद्धि अस्थायी हो सकती है, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई, स्वास्थ्य और वास्तविक जीवन के लक्ष्यों के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। अगर रील्स बनाने के क्रेज को एक संतुलित और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो ये नौजवानों के मुस्तकबल यानी कि भविष्य को संवारने में एक बेहतरीन माध्यम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई आज की बात। अब शुरू करते हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसका नाम है फोन करें गीत सुनें, और ये है इस प्रोग्राम की पहली फरमाइश। हमें कॉल के जरिए मिली है और फोन करने वालों के नाम है नागौर से अनवर हुसैन और उनके दोस्त, और इन्होंने सुनना चाहा है सूरज फिल्म का गीत, एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

अगला गीत इस फरमाइश में शामिल है फिल्म अनाड़िका, जिसे गाया है उदित नारायण, और इसके फोन कॉल करने वाले हैं रामनिवास सांगवा जाट कॉलोनी नागौर से। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: लीजिए प्रोग्राम का अगला गाना सुनिए, फिल्म दिलवाले से। इसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। इस गीत की फरमाइश हमें फ़ोन के ज़रिए हासिल हुई है नियाज पेंटर लोअरपरा नागौर से, इकबाल सिंदल नागौर से और गोपाल राम मोशेरी नागौर से। इसके साथ ही दिलशाद अहमद ढाल वाले ने इसकी फरमाइश हमें फ़ोन करके भेजी है, तो ये सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।
1: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज़

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और प्रोग्राम का अगला गीत सुनना चाहा है अमर सिंह कॉलोनी नागौर से मुकेश शर्मा, पूजा डीडवाना फाटक नागौर से और अब्दुल सत्तार करीमनगर नागौर से। आपने आप सबने सुनना चाहा है फिल्म कुर्बानी का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे 10 नंबरी फिल्म से, जिसे गाया है मुकेश ने और इसकी फरमाइश हमें भेजी है जान मोहम्मद अजमेरी गेट से और संदीप हुड्डा नोखा से। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

मिले जुल सुनने वाली सभी सखियों को रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों लेकर हाजिर हैं आपका अपना मन भावन कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं चर्चा से। सखियों वजन आजकल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि फिजिकल वर्क हम कम करते हैं और खाने पीने के लिए आज हम कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना वज़न भी बढ़ा लेते हैं। और फिर हम जब जागते हैं तब हम सोचते हैं उस वज़न को घटाने के लिए, और फिर हम दौड़ते हैं ऑनलाइन तरीके, ऑनलाइन हम गूगल सर्च करते हैं कि कैसे हम अपने वज़न को घटाएं। सखियों कुछ जो ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड भी हो सकती हैं दवाइयाँ, तो हमें उससे बचना चाहिए क्योंकि कई बार असंभव वादे करके अच्छी खासी राशि वसूल ली जाती है और बदले में हमारी सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें बचना है वज़न घटाने के झूठे विज्ञापनों से, हमें उन जालों से बचना है, जादुई गोलियों से हमें बचना है, बिना डाइट के वज़न घटाने के जो दावे किए जाते हैं हमें उनसे बचना है। और रातों रात 10 किलो वज़न घटा सकते हैं के जो वादे हैं उनसे हमें सावधान रहना है। अक्सर झूठी कहानियां बनाकर नकली तस्वीरें दिखाई जाती हैं और हमसे अच्छी खासी जो राशि है वो ऐंठ ली जाती है। हमें चाहिए कि हम फर्जी विज्ञापनों की पहचान करें। असंभव वादे जो होते हैं बिना डाइट या एक्सरसाइज के वज़न घटाएं, एक महीने में 30 किलो वज़न कम करें, ऐसी जो बातें हैं उन पर सखियों हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो जादुई जो पैच है, क्रीम है, बेल्ट है, कोई खास चूर्ण है, ये जो चर्बी पिघला सकते हैं, ये सब दावे सही नहीं होते हैं। नकली समीक्षाएं भी लिख दी जाती हैं बढ़ा चढ़ाकर, ताकि जो हमें जो है मूर्ख बनाया जा सके। तो हमें चाहिए कि हम वज़न घटाने का सही और सुरक्षित तरीका खोजें और हम सब ध्यान दें और इन सब बातों को हम जो है इग्नोर करें। हमें चाहिए कि वज़न घटाने के लिए हम संतुलित आहार लें, अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें, फल खाएं, दालें खाएं, फाइबर युक्त चीज़ें जो है वो अपने खाने में शामिल करें, नियमित व्यायाम करें, कम से कम 30 मिनट सैर करें, योगा करें, कसरत करें, और एक हफ्ते में अगर हम आधा किलो से एक किलो वज़न कम करना ही सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए सही है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी एक हफ्ते में 5 किलो वज़न कम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमें सुरक्षित तरीके से वज़न कम करना है और हमें जो है हरी सब्जियों, दलिया, दालें, फाइबर युक्त जो आहार है, पपीता है, सेब है, खीरा है, हरी सब्जियां पेट को लंबे समय तक जो है भरा रखती हैं और हमें जो अनावश्यक खाने से बचाती हैं। और सखियों हमें ये भी चाहिए कि हम प्रोटीन अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, उबले अंडे का सफ़ेद भाग हमें खाना चाहिए, दालें हमें खानी चाहिए, भुने हुए चने हमें खाने चाहिए, और एक मखाना जो आता है उसको हमें खाना चाहिए। वो हम भिगोकर भी खा सकते हैं, थोड़ा हल्का भूनकर भी खा सकते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा भी अधिक रहती है और वो हमारे वज़न को भी नहीं बढ़ने देता। पेय पदार्थ की बात करें तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले तो अपना पानी इनटेक पर ध्यान दें। कम से कम 1 से 10 गिलास पानी हमें पीना ही पीना है, और हमें बिना चीनी की चाय पीनी है, बिना चीनी की ग्रीन टी हमें पीनी है। जंक फूड से हमें बचना है क्योंकि जंक फूड जो है वो हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और वो हमारे लिए हेल्दी भी नहीं होता है। हमें चाहिए कि हम लौकी और पालक को अपने भोजन में शामिल करें। ये दोनों कम कैलोरी और उच्च फाइबर से भरपूर होती हैं जो वज़न घटाने में बहुत मदद करती हैं। लौकी की बात करें तो इसमें 96% पानी होता है और बहुत कम कैलोरी होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और जो लौकी है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करती है, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है और
और हमें जो है वो पोषण देती है। पालक की बात करें तो पालक में मैग्नीशियम और फाइबर जो है वो रहता है, जो पाचन क्रिया को सुधार कर हमारा मेटाबॉलिज्म तेज करता है और इसी से हमारी चर्बी घटती है। एक हफ्ते में 5 किलो वजन प्राकृतिक रूप से घटाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित या वास्तविक सक्षम नहीं होता है। इतनी कम अवधि में जो वजन कम होता है वह मुख्य रूप से शरीर का पानी और ग्लाइकोजन होता है, जो कि हमारी जो चर्बी है उसको सुरक्षित रूप से वजन घटाने के लिए तो हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे जो है उच्च फाइबर वाला जो भोजन करें, नियमित हम एक्सरसाइज करें और अपना जो खाने पीना है उसके ऊपर हम ध्यान दें, तभी हम जो है अपने वजन को स्वस्थ रूप से कम कर पाएंगे। हमें चाहिए कि हम मीठा जो है वो खाने में कम कर दें, मैदा हम बिल्कुल छोड़ दें, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जो जूस रहता है और मैदे से बनी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे वज़न को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं खानी हैं। हमें प्रोटीन की तरफ ध्यान देना है। अंडे, दाल, पनीर और अंकुरित अनाज जो है वो सबसे अच्छा स्रोत है वज़न घटाने के लिए। हमें चाहिए कि हमारी जीवन शैली में भी हम बदलाव करें, खूब पानी पिएं, कार्डियो करें, पर्याप्त नींद लें। हाँ सकियों, नींद जो है वो हमारे वज़न को बढ़ा सकती है। अगर हम ज़रूरत से कम नींद लेते हैं तो ये भी हमारे वज़न बढ़ने का कारण बनती है। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे तक की अच्छी नींद लें, क्योंकि कम सोने से जो है वज़न नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, अब आपको बताते हैं बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में। ये प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली योजना है, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं तक की जरूरतमंद छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद करना है। योग्यता की बात करें तो केवल छात्राएं जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक की छात्राएं हैं, वो इसकी पात्र हैं। और समुदाय की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जो समुदाय हैं, वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड लेना भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। और आय की बात करें तो सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक उस जो लड़की है उसके परिवार की नहीं होनी चाहिए। कक्षा 9वीं और 10वीं में जो है वो 5,000 रुपये प्रतिवर्ष राशि दी जाती है और कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र इस योजना से लाभ लेने के लिए चाहिए होता है और पिछले वर्ष की अंक सूची की भी ज़रूरत पड़ती है और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत रहती है। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति के लिए बैंक पासबुक का होना भी अनिवार्य है और आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो तो चाहिए ही चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और इसके लिए छात्र जो हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करके इस योजना से लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वो पात्र हैं सखियों तो उनको ये इस योजना से लाभ वो लड़कियां ले पाएंगी जो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के अंतर्गत आती हैं। आइए कराते हैं आपका फिर से मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, अब हम चर्चा करेंगे आँखों की। मानसून का मौसम चल रहा है और हमें हमारी आँखों के ऊपर भी ध्यान देना है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। मानसून में आँखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, गंदे पानी से बचाव करना है और आँखों को हमें रगड़ना नहीं है। इस मौसम में कीट पतंगे भी ज़्यादा होते हैं और अक्सर जब वो हमारे से टच होते हैं उसके बाद हम आँखों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। बरसात के मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, जिससे जो है आँखों में संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमें चाहिए कि हम हाथ भी बार बार धोएं, हाथों को साफ रखें, और अगर हमारे हाथ किसी कारण से गंदे हैं तो हम हमारी आँखों को ना छुएं, हमें ये सावधानी रखनी है। बारिश से हमें बचाव करना है और गंदा पानी जो बारिश का अगर हमारी आँखों में लग गया है तो हमें चाहिए कि हम उसको साफ पानी से भी साफ कर लें। हम चीज़ें साझा ना करें इस मौसम में, हमें अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का तौलिया, रुमाल और आई मेकअप जो है उसका इस्तेमाल करने से हमें बचना है, क्योंकि ऐसे मौसम में संक्रमण ज़्यादा रहता है। हमें लेंस की देखभाल भी करनी है। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं तो हमें चाहिए कि वो हम साफ़ घोल से धोएं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आँखों की सुरक्षा के लिए 20-20-20 नियम का हमें पालन करना चाहिए, और जैसे धूप में जो है यूवी ब्लॉकिंग चश्मा हमें पहनना है, स्वस्थ आहार लेना है, हमें अपनी पलकें झपकानी है। अगर हम स्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें हर 20 सेकंड के बाद हमें हमारी जो है आँखों को झपकाना है, और ये सब आदतें जो हैं वो हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में काम करती हैं। हमें चाहिए कि हम हमारी आँखों की तरफ पूरा ध्यान दें, हर 20 मिनट के बाद, हर 20 जो है फिट की दूरी से हम स्क्रीन को देखें, टीवी इत्यादि हम देखते हैं तो हमें चाहिए कि दूरी जो है वो हो और 20 सेकंड के लिए हम हमारी पलक जो है वो ज़रूर झपकाएं। उचित दूरी से कंप्यूटर या फ़ोन का जब हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। सखियों, हमें चाहिए कि धूप का चश्मा भी हम बाहर जाते समय पहने, क्योंकि बारिश के बाद जो धूप आती है वो बहुत ही गहरी धूप होती है और वो भी हमारी आंखों को कई बार नुकसान पहुंचाती है। हमें चाहिए कि पौष्टिक आहार भी हम इन दिनों में लें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पालक खाएं, आंवला खाएं, और अगर हमें कोई दिक्कत हो गई है तो हम नियमित जांच जरूर कराएं। और सखियों, पर्याप्त पानी तो हमें पीना ही पीना है, वो तो हमारे स्वास्थ्य को हर तरह से अच्छा रखता है। आइए कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, हम चर्चा कर रहे थे मानसून में रखें आंखों का ध्यान, और हमने बात की थी संतुलित आहार की, पर्याप्त पानी पीने की और साफ सफाई पर ध्यान देने की। और हमें चाहिए कि आंवला का भी हम नियमित सेवन करते रहें जिससे हमारी आंखें सही हों। सखियों, घड़ी की सुइयां कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं, तो रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: कि शायद जरूरत ना पड़े। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए LPG और LNG की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए, पेश है फिल्म संगीत।

परिंदा फिल्म का ये गीत था जिसे गाया था सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने। प्रोग्राम का अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन प्रोग्राम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ। तो आप भी हर एक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच अपनी खेतीबाड़ी और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर तो आपको बताइए हैं, फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं, तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर 2401-68-240-168 और नागौर का स्टडी कोड है 015-82। और हाँ, आपको ये भी बताते चले कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसानवाणी प्रोग्राम जो हुआ करता था और उसमें प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन प्रोग्राम का प्रसारण अब नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसानवाणी कार्यक्रम हमारे केंद्र जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई, आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत। इसे हमने लिया है शेषनाग फिल्म से और इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में सुनिए कुछ लोकगीत। पहले सुनिए फतेह कुमारी व्यास का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 6:30 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद में राजस्थानी में, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर शोर शराबा किया। राज्यसभा के सभापति सीबी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठा लिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

0: गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एकीकृत खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई कानून भी नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन हर साल केवल 4 भगोड़ों का प्रत्यर्पण कर सका, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे। पिछले 3 वर्षों में इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में काफी बढ़ोतरी हुई है और 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने भारत पोल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 1400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ा गया। इससे सूचना साझा करने में लगने वाला समय घटकर 3 से 10 दिन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 अगस्त को अलवर आने का कार्यक्रम है। अपने इस दौरे में श्री शाह करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, इससे स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में गति मिली है। उन्होंने बताया कि 25,000 से ज्यादा केंद्रीय और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2,18,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों, दुकानदारों, कारीगरों और उद्यमियों को बिना गारंटी संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ इस योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ से अधिक का ऋण मिला है। देश भर में इस साल जून महीने तक योजना के तहत 59 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऋण मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इसमें लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भौगोलिक संकेत यानी GI टैग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में उभरा है। उत्पादों को उनके मूल स्थान से जोड़कर GI टैग पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं, दुरुपयोग को रोकते हैं और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाते हैं। राजस्थान में 24 विभिन्न उत्पादों को GI टैग्स मिल चुके हैं। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेया गाजी की एक रिपोर्ट।
1: जीआई टैग कारीगरों, बुनकरों, किसानों और उत्पादक समूहों को बेहतर बाजार पहचान हासिल करने और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया सहित राजस्थान के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग प्रोडक्ट की पहचान को मजबूती देता है, साथ ही कानूनी सुरक्षा देता है और ये भी बताता है कि उसकी खासियत मूल इलाके से जुड़ी है। सरकार की पहल, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। ये प्रयास जीआई टैग उत्पादों को ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास के वाहकों के रूप में बदल रहे हैं।
0: और अब मौसम। राज्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इससे अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल सकता है। कहीं मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलौदी में बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। इससे उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पाली के भावरी गांव के खेल मैदान में सघन पौधारोपण किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया है। उधर जैसलमेर को हरा भरा बनाने के मकसद से नाचना ग्राम पंचायत में हरियाला सावन अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत अब तक 1,000 पौधे लगाए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ईंधन में मिलावट के दावों का खंडन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि पहले से लागू उन्नत और विस्तृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अतिरिक्त 87,000 से अधिक आउटलेट्स में दिन में लगभग 8 से 12 बार जल रिसाव परीक्षण सहित अतिरिक्त जाँच शुरू की गई है। मंत्रालय ने बताया कि क्लोराइड और सल्फाइड के लिए 2,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से अब तक पूरे देश में केवल 2 मामलों में क्लोराइड मिलावट पाई गई है और उन पंपों से बिक्री तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी खुदरा आउटलेट में संदूषण या मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि ओएमसी को पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी संभावित मिलावट का पता लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। समूचा जिला इन दिनों धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिल रही है। सुबह से देर शाम तक मंदिरों में पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रद्धालु भगवान

0: भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घरों और प्रतिष्ठानों में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच मॉनसून की बेरुखी और कम सक्रियता किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी अच्छी वर्षा का इंतजार है। कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। आकाशवाणी बीकानेर क्लस्टर के उप महानिदेशक RL असवाल ने आकाशवाणी चूरू केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रमों और नई योजनाओं की जानकारी दी गई। परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया तथा नव निर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में रोजगार विभाग की ओर से युवा संबल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 727 युवाओं का पंजीयन हुआ, जिनमें से 541 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद 283 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मेले का उद्घाटन करते हुए युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग जिले में फलोद्यान विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है। जिले के अनेक किसान इस योजना का लाभ लेकर पारंपरिक खेती के साथ फल बगीचे विकसित कर रहे हैं। विशेष रूप से तारानगर क्षेत्र के किसानों को इससे आय बढ़ाने में मदद मिली है। विभाग किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। उधर कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के 50 किसानों का दल गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययन भ्रमण पर रवाना किया गया है। किसान वहां आधुनिक खेती, जल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी लेकर जिले में नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चूरू में गंग नहर स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गंग नहर केवल सिंचाई परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का आधार रही है। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी बल दिया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक हाल ही में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के मामलों पर सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्राप्त अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे परिवादियों को राहत मिली। करगिल विजय दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चूरू मुख्यालय के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जबकि सादुलपुर में भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सादुलपुर क्षेत्र के मुंदीताल गांव में धानक समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज ने मृत्यु भोज की परंपरा बंद करने का संकल्प लिया है। समाज के लोगों ने इस निर्णय को सामाजिक जागरूकता और अनावश्यक खर्च रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के लंबोर खेड़ी गांव के निवासी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान का ड्यूटी के दौरान हादसे में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव में इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पे से संजय भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल माए 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियां ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश माए अजे ताई 2,55,32,000 छोटा उद्यम ने फायदो मिलियो और उत्तरी अगुणी राजस्थान

0: आर्य सारेरा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता दो दिन भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काऊ मजला दर्जारी बिरखारा आसार। समाचार और साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही विपक्षरा हंगामा रे कारण रोकी जी। विपक्षरा दला नीट मुद्दा माथे पडेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्यवाही समेत कई मुद्दा माथे शोर शराबो करियो। राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्षरा हंगामा रे बीच शून्यकाल शुरू करियो। विपक्षरा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी रो मुद्दो उठायो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि अयोध्या में राम मंदिर की खिलाफत करण वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभय चंदा री कथित चोरी ने लेर नाटक करने जनता ने गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में हंगामारी हालत देखने मिली। सवारा सदन री कार्यवाही शुरू होने माथे अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश करी पर विपक्षरा सदस्य पडेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रो मुद्दो उठा दियो। विपक्षरा सदस्य ई मुद्दा माथे गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग कर रहा। श्री बिरला सगला सदस्यों सदन ने सुचारू चलावण माए मदद करने री अर्ज करी।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कराधान और दूजा कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश करया। इनमाए टैक्स डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली रा नियमा ने सरल बनावण रो प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय कहो है कि भारत भगोड़ा अपराधियों निपटण सारू खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित करियो है। मंत्रालय बतायो कि साल 2021 2026 रे बीच 36 देशों भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। सरकार साल 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू करियो है। साल 2014 पहला भारत रो फगत 37 देशों रे साथ प्रत्यर्पण समझौतो हो और आर्थिक भगोड़ाओं निपटन और वारी जायदाद जब्त करण सारू कोई कानून नहीं हो। मंत्रालय बतायो के साल 2004-2013 रे बीच भारत औसतन हर साल फगत 4 भगोड़ा रो प्रत्यर्पण कर सक्यो जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध विचारू रिया। लाडला 3 साल माए इंटरपोल कानियो रेड कॉर्नर नोटिस कार्डन माए घनी बदवार भी है और 401 भगोड़ा अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी करी जा है। सरकार भारत पोदरी शुरुआत करी है जिनरी मार्फत 1432 एजेंसियां ने इंटरपोल जोड़ी जा है जिनू जानकारी साझा करण माए लागण वालो भगत 3-10 दिन रोवे गयो है। गृह मंत्री अमित शाह भगोड़ा अपराधियों का मुद्दा ने देश री संप्रभुता आर्थिक स्थिरता कानून बंदोबस्त और राष्ट्रीय हिफाजत रा रूप में जोड़ियो बतायो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 16 अगस्त ने अलवर आवण रो कार्यक्रम है। आपरा ई दौरा माए श्री शाह कोई 250 करोड़ रुपया री लागत बनन वाला सरस डेयरी प्लांट री नींव धरेला। वे अलवर मेडिकल कॉलेज रा नुआ भवन रो उद्घाटन करेला। गृह मंत्री रा प्रस्तावित दौरा ने लेर आज वन मंत्री संजय शर्मा री सदारत में एक समीक्षा मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन राठावा एहलकारा केंद्रीय गृह मंत्री रा दौरा री तैयारियां ने लेर बतल करी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख बत्ती परिवारों रो बिजली बिल शून्य वे गयो है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज वणा कहो कि आ योजना नागरिका ने मजबूत बना रही है। इनु स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य कानी बदन में गति मिल रही है। वणा बतायो कि 25,000 बत्ती केंद्रीय और 81,000 बत्ती राज्य सरकार री इमारतों री छत

0: माथे सोलर सिस्टम लगाई गया है। ऐसा समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर में प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अजय ताई 2,55,00,000 बत्ती लाभार्थियों ने कोई 2,18,000 करोड़ रुपया का कर्ज मंजूर कर लिया है। ये योजना की मार्फत छोटा उद्योगों रेहड़ी पटरी माथे सामान बेचने वाला दुकानदारा कारीगर और कारोबारियों ने बिना गारंटी संस्थागत रोकड़ मदद मुहैया कराई जावे। कोई 60% हिस्सेदारी रह साथ है। ई योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़ ने भागीदारी री है। अजय ताई 1,54,00,000 बत्ती महिलाओं ने 67,982 करोड़ बत्ती रा कर्ज मिलिया है। देश भर में इस साल जून महीना तय योजना के तहत 59 करोड़ बत्ती लोगों ने कर्ज मंजूर कर लिया है। ध्यान जोग है कि आ योजना साल 2015 में शुरू करी जी ही। इनमें लघु उद्यमा ने 20,00,000 रुपया तय रा कर्ज दिया जावे है। इणु स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ने बढ़ावा मिलो है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग स्थानीय समुदाय सारू माली हालात पैदा करन रा मौका देवता सांस्कृतिक विरासत री रक्षा सारू एक मजबूत जरिया रा रूप में उभरियो है। उत्पादन ने वारा मूल ठोड़ू जोड़ ने जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान ने संरक्षित करे है, दुरुपयोग ने रोके है और उपभोक्ताओं रा भरोसा ने बढ़ावे है। राजस्थान में 24 न्यारा न्यारा उत्पादन ने जीआई टैग मिल चुको है। पेशे न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
1: जीआई टैग कारीगरां, बुनकरां, काश्तकारां और उत्पादक समूहां ने चोखो बाजार री पहचान हासिल करण और प्रीमियम बाजारा तक पहुंच बनावण माए मदद करे है। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी बुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया समेत राजस्थान रा कई उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिल चुको है, जो इनरी पहचान ने और मजबूती देवे है। जीआई टैग प्रोडक्ट री पहचान ने कानूनी हिफाजत देवे है और ओई बतावे है वारी खासियत मूल इलाका से जुड़ी है। सरकार री पहल रोकड़ मदद, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफार्म री मार्फत इनरो आर्थिक सिस्टम मजबूत हो रियो है। आकोशिश जीआई उत्पादा ने ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास रा संचालन रा रूप माए बदल रहा है।
0: जानिया मानिया शिक्षाविद और त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल रा पहली रा राज्यपाल डॉक्टर डी वाई पाटिल आज देवलोक वे गया। वे 90 साल रहा वणा महाराष्ट्र रा कोल्हापुर माए आप रा रहवास माथे आखिरी सांस ली। डॉक्टर पाटिल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं रा पसारा सारू महताऊ योगदान दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारा देवलोक होण माथे शोक जतावता आपरा संदेश माए लिख्यो के श्री पाटिल ने गरीबारा जीवन ने अच्छो बनावण सारू काम करियो। गृह मंत्री अमित शाही वारे परिवार जनारे प्रति शोक जतायो है। अठीने राज्यपाल हरिभाव बागड़े वारे देवलोक होण माथे शोक जतायो है। अरब मौसम राज्य रे ऊपर बण्यो कम दबाव रो हल्को, अबे उत्तर अगुणी राजस्थान माए परिसंचरण तंत्र माए बदल गयो है। इणु आवता कुछ दिना ताई प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए मौसम रो न्यारा न्यारा रूप देखण ने मिल सके है। कठई मझलाऊ तेज बिरखारा आसार है और कठई उमस भरी गर्मी लोगारी परेशानी बढ़ा सके है। मौसम महकमा मुजब उत्तर अगुणी राजस्थान और आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इनरा असरों भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए कठे कठे हल्काऊ मजला दर्जारी बिरखा होण रा आसार है। भरतपुर संभाग माए कुछ थोड़ा गरज और तेज हवा रह साथ है भारी बिरखाई दर्ज वह सके है। वठई 6-8 अगस्त रे बीच अगुणी राजस्थान माए नुआ परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होवणु मझलाऊ तेज बिरखारी आस है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आथुणी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी माए बिरखारी गतिविधियां माए कमी रा आसार है। इणु उमस भरी गर्मी बनी रह सके है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल तो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वही पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, केवल सिर्फ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियाणो राजस्थान अभियान रे तहत पाली जिला रा भावरी गांव रा खेल मैदान में सघन पौधरोपण करी जियो। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भांत भांत रा पौधा रोपी जा है और वहां रा संरक्षण रो संकल्प ली रिजियो। जैसलमेर ने हरो भरो बनावण रा मकसद नाचना गांव पंचायत में हरियाणो सावण अभियान शुरू हुयो। इन रे तहत अजे ताई 1000 पौधा लगाई जा है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरों सुन ले रहो। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्या रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल में 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियां ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश में अजे ताई 2,55,00,000 32 छोटा उद्यमियों ने फायदो मिलियो। और उत्तरी अगुणी राजस्थान एर आरएसआर रा हल्का में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्काओं मजदा दर्जारी बिरखारा आसार। नईंडर साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन सवारा 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली छिकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। बे टूटिया छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ये आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाया ने बैणा ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भुआ भाईली सब ने ढोगर जैसा, और महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल बहन आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं बाने भी घनी मोकली राम राम सा।
6: देखो रामा श्यामा आपा करा हाँ ढोक देवा हाँ, और आपा जाना हाँ कि अपना जो श्रोता है अपना जो काश्तकार भाई बहन है वह बहुत ही मुस्तैदी से इंतजार कर रहे है अपना कार्यक्रम रो, क्योंकि आपा न सिर्फ खेती बाड़ी की बात करा हाँ बल्कि खेती बाड़ी से जुड़ोड़ा जो नवाचार है जो जानकारियां हैं वहां तक पुगावा हाँ, और कोशिश करा हाँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो काश्तकार है वे जागरूक हो सके।
7: बिल्कुल, देखो जो एक परंपरागत खेती है बतो किसान भाई बहुत समस्याओं करता आ रहे हैं, पर नवाचार इसी चीजें जिन्हें अपना के देखो एक नए तरीके से खेती करा, एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है बिना अपना के और खेती कमाए कौन कौन।

0: सा जका नया प्रयोग हो रहे ही कुण कुण सी जकी खामे ही माने दूर करके अपना किसान भाई आगे बढ़े।
1: खामिया की जब आप बात करो महेश भाई, एक खामी जो नजर आवे बा है खेती कर ली फसल मिल गई बी के पाछे कहीं जो फसल का अवशेष बच जावे है वह एक सिरदर्दी बन जावे है। बाला तो भाई जो अपनी वायु है प्रदूषित हो जावे, अठीने बठीने फेंका तो भी कचरो फैले, तो करा काई।
0: भाई देखो किसान भाई जका फसल कटाई के बाद में जका फसल अवशेष बच जाए ही तो इसे देखें कि भी एक तो देखो मजदूरी महंगी होगी समय के साथ और ट्रैक्टर को खर्चो भी ज्यादा, तो फसल अवशेष ने निकालना थोड़ा महंगो लगा है। तो यह सोचा कि भी अब अगली फसल की बुआई करनी है तो लो भी फसल अवशेष ने जड़ा देवा, पर फसल अवशेष जी आप जड़ावा तो धुओं धप्पड़ हो है और जो जकी गैस ही जी की कार्बन डाइऑक्साइड है जकी जहरीली गैस ही वह वायुमंडल में मिल जाए और वायुमंडल प्रदूषित हो है और जका श्वसन संबंधी रोग ही वह आप देख रहे हैं कि जका शहर कमाए कतरा ज्यादा बढ़ता जा रही जका संपर्क में आवे जी अपने फसल अवशेष जराने से
1: जी। अब ई में आपा काई कर सका हाँ कि आपा जो फसल अवशेष है जो बचोड़ी आपने कचरो जी ने आपा समझा बीसू भी आमदनी कर सका हाँ।
0: अच्छा
1: अशा अशा नवाचार हो गया जी, पराली की बात करा इन्हें आप मशीना के द्वारा एकटो करो हो दबाओ हो और बिने छोटो कर लियो हो अभी के बाद में बन जावे एक केक जैसी आकृति। अब वा काम में आवे है आपके मशरूम उत्पादन में एक बेड की तरह। तो हो गया ना कि जो आपा सोच रहा है कि यह तो कोई काम की चीज को नहीं बेकार है बीसु भी आपा बेचर आमदनी कमा सका हाँ।
0: बिल्कुल, और फसल अवशेष कमाए जी आपा देखा हाँ कि जब फसल अवशेष बच जाए ही तो जकी केंचुआ की खाद है यानी कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फसल के लिए उपयोगी खाद है। तो फसल अवशेष कमाए जब आपा गोबर के साथ में केंचुआ छोड़ देवा तो जकी वर्मी कंपोस्ट खाद है बिना केंचुआ तैयार कर दी और अतरी चौकी खाद है जो कि फसल ने पोषण देवे और किसान भाई के लिए लाभकारी यह भी बन सके है।
1: और जी आप बात करा केला की फसल कई लोग उद्यानिकी में लेवे है, अब केड़ो तो एक बार फसल देवे है फल दिया बेकार, अब कहीं करा काट और इन्हें फेंक दिया, पर अगर आप इन्हें अइया ही फेंक दो ला तो आप नुकसान उठा जाओ ला, क्योंकि केला का जो तना है जैविक खाद लिक्विड तरल खाद और बहुत सारा ऐसा उत्पाद बना के काम में आवे है। केला का तना से निकल वालो जो रेशो है एक मजबूत धागा का रूप में काम में आवे है, केला का पत्ता पैकिंग करवा के काम में आवे है और कई तरीका के जो भोज्य पदार्थ है की टोकरियां बने हैं जो भाप पर रखी जावे बी में भी यो काम में आवे और औषधीय गुण तो इका है ही है साहब।
0: और देखो एक जकी किसान भाइयों के लिए एक चारे की समस्या है कि गर्मियां कमाए तो को हरे चारे की समस्या आवे पर अबार हरे चारे खूब जाए पर पशु ने हरे और सूखो दोनों प्रकार को चारो चाहिए पौष्टिक आहार के रूप में। तो अबार क्योंकि देखो ज्वार बाजरे की कड़वी के साथ में आपा जिया की गेहूं को भूसो बच रहे धान की पराली बच रही है तो बिना बरसीम के साथ में मिला के पशुओं ने खिलावा तो बहुत ही चोखो आहार बने मिल सके।
1: बिल्कुल,
0: ज्वार बाजरे की कड़वी और गेहूं को भूसो धान की पराली ने बरसीम के साथ में मिला के खिलास का।
1: बिल्कुल, और अब बाता चीता तो बहुत होगी अपना पावना भी आवाड़ा है बांसू भी बाता चीता आपा कर शा, पर जब तक वे आवे है बाकी अगवाई में ही सही एक गीत सुना दियो सा।
0: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: वाह महेश भाई, गीत तो बहुत चोखो संजोड़ ले आया। अब जी हाँ, गीत आप ले रहा है भैया, जानकारियां की तरफ भी माने ले चालो साहब।
1: किसान वाणी सुनवाड़ा साहब साथ ने राम राम। किसान भाया आपना बीच आज मौजूद है डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आए हैं और आपसे आज मैं बातचीत कर सया कृषि उत्पादन का मैं ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। तो डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, कृषि उत्पादन का मैं ड्रोन की काई उपयोगिता है इस विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली तो माका जगह किसान भाई ही बना यही बताओ कि ड्रोन हो या काई है।
2: ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान होता है जिसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से उड़ाया जाता है। कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन को खास तौर पर खेतों में छिड़काव और निगरानी के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें एक टैंक होता है जिसकी क्षमता 10 से 30 लीटर होती है, बैटरी सिस्टम होता है, जीपीएस और ऑटो पायलट सिस्टम होता है, स्प्रे नोजल होता है तथा कंट्रोल इसमें होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो खेती के में जो ड्रोन है भी को कई उपयोग है, किस प्रकार से यो काम आ सके।
2: किसान भाई, खास तौर से ड्रोन का उपयोग फसल छिड़काव पर के लिए करते हैं। कृषि ड्रोन का उपयोग उर्वरक छिड़काव, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी रसायनों के छिड़काव एवं अन्य

0: में कमी की पूर्व सूचना का उपयोग उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त होगी।
1: जी, और डॉक्टर साहब, यदि अपना जगह किसान भाई वह खेत का माए कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहे या पशुओं को प्रबंधन करना चाहे, तो इका माए जो ड्रोन है वो कहीं उपयोगी साबित हो सके के?
0: हाँ, ड्रोन जो है पेड़ और फसलें लगाने में मदद करते हैं। इससे श्रम तथा ईंधन दोनों की बचत होती है, साथ ही इसमें बजट भी ड्रोन के उपयोग करने पर कम आता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किसान भाई न केवल अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने मवेशियों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, क्यों ड्रोन में थर्मल सेंसर तकनीक लगी होती है, उसके द्वारा वो जानवरों को खोजने में मदद करती है।
1: डॉक्टर साहब, कृषि के माय ड्रोन की बात करें, हाँ तो इसमें ड्रोन का कई कई लाभ ही कृषि के माय?
0: ड्रोन से खेती बाड़ी में बहुत से लाभ होते हैं। खास तौर से ड्रोन मैनुअल जो है छिड़काव की तुलना में 50 से 60 गुना तेजी से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकता है। दूसरा, ड्रोन से तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक दिन में 30 से 40 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव कर सकता है और एक बार में 15 से 20 लीटर कीटनाशक एवं फफूंदनाशक आदि को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ड्रोन के उपयोग से 90% तक पानी और 40% तक कीटनाशक एवं फफूंदनाशक की बचत की जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ड्रोन का फायदा तो आप बता रहे हो, किसान भाई ने काफी मदद भी मिला है खेती के काम में, पर किसान भाई सोच रहे हैं कि भी ड्रोन की जो कीमत है वह कतरी हो है लगभग, और कतरे पैसा कमाए आ जाए?
0: ड्रोन जो है अलग अलग तरह के बाजार में मिलते हैं। खास तौर से 10 लीटर की क्षमता वाला ड्रोन जो है वो 3 से 4 लाख रुपए में आता है। इसके अलावा 20 लीटर क्षमता वाला ड्रोन 5 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत होती है और 30 लीटर वाले बड़े ड्रोन की कीमत 7 से 10 लाख रुपए तक होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जो का कृषि उपकरण हुए वहाँ पर सरकार सब्सिडी देवे है, किसान भाई ने सहायता देवे है, तो ड्रोन यदि किसान भाई खरीदना चाहे तो कहीं ई पर भी कुछ सरकार सब्सिडी देवे है?
0: हाँ, भारत सरकार जो है कृषि ड्रोन को खरीदने पे सब्सिडी देती है। किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। कृषक उत्पाद समूह और कृषि संस्थाओं को भी अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी सहायता दी जाती है। इससे छोटे किसान भाई ड्रोन की सेवाएं ले सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, हर किसान भाई कन देखो ड्रोन उपलब्ध कोनी होगा कई बार, पर यदि कोई सक्षम किसान भाई ड्रोन ले आके यदि दूसरे किसान भाई ने उपलब्ध कराना चाहे, तो ई प्रकार को जो व्यवसाय है बिना की प्रकार से कर सके?
0: किसान भाई अपनी क्षमता के अनुसार ड्रोन को खरीद कर इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई कृषि ड्रोन से बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके साथ ही ड्रोन खरीदना होगा, गांव में अपनी सेवा का प्रचार प्रसार करना होगा और ड्रोन सेवा शुल्क प्रति एकड़ ₹300 से लेकर ₹600 तक ले सकते हैं। इससे सीजन में अच्छी कमाई संभव है। एक ड्रोन से महीने में 1-2 लाख रुपए तक कमाई संभव है। यह सीजन पर निर्भर करती है। अनुमानित है जो ड्रोन होता है वो एक दिन में 20 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है और उसकी कीमत ₹40-400 प्रति एकड़ होती है छिड़काव की, और साथ ही कुल जो है ₹8,000 प्रतिदिन उससे हम कमा सकते हैं। सीजन में पूरे महीने में ड्रोन जो है 20 दिन काम में लिया जा सकता है, जिससे ₹1,60,000 प्रति माह की इनकम किसान भाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन को उपयोग कर रहे हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं खेत का माए, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो कि ड्रोन के इस्तेमाल में किसान भाई ने ध्यान रखनी चाहिए?
0: किसान भाइयों को ड्रोन का प्रयोग करते समय बहुत सी सावधानियां रखना जरूरी है। खास तौर से जब तेज हवा चल रही हो, बारिश आ रही हो या तूफानी मौसम हो रहा हो, उस समय ड्रोन की उड़ान नहीं करें। बैटरी जो है पूर्व में चार्ज रखें। इसके अलावा सही मात्रा में दवा का घोल बनाएं उसमें, और सुरक्षा उपकरण पहने तथा स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेवें। हमेशा प्रमाणित ड्रोन एवं प्रशिक्षित पायलट का उपयोग करें। खेत का पहले निरीक्षण करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही ड्रोन की नियमित मेंटेनेंस भी करवाते रहें।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन से कीटनाशी रसायन को स्प्रे करें खेत का माए, तो स्प्रे करवा को सही समय काई है की टाइम करना चाहिए?
0: किसान भाइयों को ड्रोन से स्प्रे करते समय खास तौर से सुबह के समय 6 से 10 बजे का समय और शाम के समय 4 से 7 बजे तक का समय बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस समय में हवा की गति जो है बहुत कम होती है और दवा का प्रभाव जो है बेहतर तरीके से होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप ड्रोन का बहुत सारा फायदा बताया, और ड्रोन जो है किसान भाई को खेती में समय भी बचावा है, बिना कई प्रकार से सहायता भी मिले है, और तकनीक जो है

0: धीरे बदलती जा रही है। किसान भाई भी नवाचार कर रहे हैं, तकनीक के माध्यम से जो है खेती कमाए आगे बढ़ता जा रहे हैं। तो ड्रोन का भविष्य ने आपकी प्रकार से देखो कई संभावना ही।
1: किसान भाइयों, ड्रोन का आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत में जो कृषि है वो तेजी से डिजिटल होती जा रही है। ड्रोन तकनीक आगे चलकर इन क्षेत्रों में भी उपयोगी होगी, जैसे फसल में लगे रोग की पहचान करने के लिए, मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए, सटीक पोषण प्रबंधन करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फार्म ऑटोमेशन के लिए, जलवायु आधारित खेती करने के लिए जो है ड्रोन का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और भविष्य में ड्रोन केवल स्प्रे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा बनेगा। अतः ड्रोन का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपा स्प्रे की तो बात करया, पर ड्रोन का माध्यम से जगह दानेदार उर्वरक होए वहां को भी छिड़काव किया जा सके।
1: हाँ, दानेदार उर्वरकों का भी छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। कुछ विशेष प्रकार के मॉडल्स आते हैं जिनमें ड्रोन के जिनमें ग्रेनुल स्प्रेडर अटैचमेंट होता है, लेकिन अधिकतर ड्रोन तरल उर्वरक और कीटनाशक के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। तो किसान भाइयों से ये मेरी सलाह है कि वो अपना अगर वो दानेदार उर्वरक छिड़कना चाहते हैं तो विशेष प्रकार का मॉडल ही काम में लेवें उसके छिड़काव के लिए।
0: जी और डॉक्टर साहब, कौन कौन सी इसी फसल हैं जहाँ का मैं ड्रोन ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे?
1: खास तौर से ड्रोन का उपयोग किसान भाई धान की फसल में, गेहूं में, कपास में, मक्का में, गन्ना में, सोयाबीन में, सब्जियों में कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़े खेतों में जहाँ पर फसल की जो क्षेत्रफल ज्यादा होता है और फसल बड़ी होती है, उनके लिए जो है किसान भाई ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और फायदे के साथ कर सकते हैं।
0: और अब चलता चलता जगह मक्का किसान भाई ने ड्रोन के बारे में यदि और कोई जानकारी या कोई जरूरी बात आप बताना चाहो तो आप बता सको।
1: देखो किसान भाइयों, आजकल जो है मशीनी युग का जमाना है और खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे विशेष जोर दिया जा रहा है। तो आप लोग जो है ड्रोन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें और उसका प्रयोग जो है आवश्यकता अनुसार करते रहें। और आप ड्रोन के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ड्रोन खरीद कर अन्य किसान भाइयों को उसको किराए पर दे सकते हैं और उससे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
0: तो किसान भैया, यही जानकारी कृषि उत्पादन का मैं ड्रोन की उपयोगिता के बारे में और यह जानकारी आपने दी डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आया और किसान भैया ने अतरी चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहा है?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परंतु तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: भाई महेश भाई, बहुत सांतरी जानकारी दिला दिया आप तो। और जो अपना कैलाश चंद्र शर्मा जी पावना आया भाई, बहुत चौकी जानकारी दिया भी।
0: किसान भाई सुनिया और बहुत आनंद भी लिए जानकारी को।
5: और देखो नवाचारा की आपा बात कर ही रहा है, और नवाचारी एक जो ड्रोन प्रक्रिया है बा वाकई काम आवेली और काम आ रही है, बहुत सा काश्तकार काम में ले भी रहा है। और जिका नहीं जान रहा अच्छा भाई, आज कार्यक्रम सुनर जान ही गया वेला, तो आप दोनों ही बधाई का और धन्यवाद का पात्र हो। और चूंकि धन्यवाद को रोको नहीं देवा, तो मुझे चौपाल की रीत सुना दिया था ने गीत।
0: बिल्कुल सुना सर।

0: हाँ तो चंचल बहन
1: जी
0: देखो, पहली तो आपा सुनया कालो बैल किनारे चले छोटू राम पार्टी की आवाज में लोकगीत,
1: बिल्कुल,
0: और अब आपा सुनया महाराज छैल भंवर का अलगोजा आलीजा की आवाज में चोखो सो लोकगीत आप सुनाया, बहुत ही चोखो लगे
1: बिल्कुल। और जब सुनबा सुनावा की बात आवे है तो अब थोड़ी सी आपने मंडी भाव की तरफ भी आपा चाला और सुना दिया काई मंडी को भाव रहे हो आज को।
0: बिल्कुल,
1: तो साहब सऊ पहली बात करा सरसों की, डीक की मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 8,140 रुपया प्रति क्विंटल, जयपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,500 रुपया, भरतपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,000 रुपया, खैरतलरी मंडी में सरसों को भाव रहे हो 8,000 रुपया और सीकरी डीक की मंडी में सरसों को भाव रहे हो 7,620 रुपया प्रति क्विंटल। बठई बात करा गेहूं की तो श्री डूंगरगढ़ की मंडी में गेहूं को भाव 2,575 रुपया, कपासन की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया, बस्सी की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया और ओसियन मथनिया की मंडी में गेहूं को भाव रहे हो 2,500 रुपया प्रति क्विंटल। जठेताणी बात है तारामीरा की, डेगाना की मंडी में तारामीरा रो भाव 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, मेड़दा की मंडी में तारामीरा रो भाव रहे हो 5,250 रुपया प्रति क्विंटल, सादलपुर की मंडी में ग्वार की अगर बात करा तो भाव रहे हो 5,500 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार को भाव दौसा की मंडी में 5,640 रुपया प्रति क्विंटल को रहे हो साहब।
0: और चलता चलता जयपुर के मौसम को हाल भी बता देवा।
1: बिल्कुल साहब, गजब ही कर रहे हो मौसम।
0: पिछले 24 घंटा का मायन जयपुर को न्यूनतम तापमान रहे हो 27 डिग्री, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस। अगले 24 घंटा का मायन जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा की, और मेछाट हो सका है क्योंकि बरसात को समय, तो यह है मौसम की संभावना।
1: बिल्कुल साहब, और अब संभावना यह है कि घड़ी आंखियां कार्डर कह रही है बहुत होगी बातचीत, आप चालो पिटारी ने समेट लो किसान वाणी सु ले लो आज्ञा और करो राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओ क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओ क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक

0: ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है।
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो एआई या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
0: जी,
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
0: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
0: जी,
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
0: जी,
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी,
0: हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी,
0: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी,
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी,
0: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
0: जी,
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
1: जी,
0: एआई हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी,
1: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।

0: साथियों नमस्कार। हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
2: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
3: सर मैं इशिता।
4: मैं हूँ चेताली।
5: मैं शुभेंदु।
6: और मेरा नाम है इंदु।
7: और मैं सोमेश।
2: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
3: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
2: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
5: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
7: सर फिर क्या होता है?
2: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदे पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
5: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
2: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
8: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
3: वाह, कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
9: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
9: उल्टा?
2: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
5: फिर क्या हुआ?
2: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
5: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़

0: पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
1: अच्छा, अब समझ आया।
0: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
2: जी सर।
1: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
3: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
4: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
5: देखो इतना बड़ा पेड़।
6: अरे उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
7: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
1: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
0: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
5: माइक्रोस्कोप।
0: हाँ, अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
3: जी सर।
0: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
4: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
5: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
1: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ।
4: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया?
4: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
2: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
4: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
2: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
4: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
2: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
3: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
4: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ
4: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
4: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
2: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत?
2: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
2: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
2: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
8: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
9: पेड़ की बात, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: CIET NCERT presents English rhymes and songs.
2: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: अरब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। रात के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से।

11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश
और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है।
लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16 लाख

0: प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए एल्बम सॉन्ग्स। प्रोग्राम की पहली पेशकश अनुव जैन का गाया ये गीत।

0: और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए रफ्तार का गाया ये गीत।
1: डाउनटाउन में लगी आग, सभी भागे, बिल्डिंग से निकले धुआं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एल्बम सॉन्ग्स। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सरस्वती देवी की आवाज में, ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
4: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
6: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात के 9 बजे है। लीजिए सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुनिए चंद गजलें। पहले सुनिए मिताली सिंह की गाई ये गजल।

सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में ये गीत आपने सुना। गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपके लिए विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म आन मिलो सजना।

मिलो सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आज का ये संगीत का सफर आपने तय किया अपने दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।
1: अरे हाँ हाँ हाँ।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो यह है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए, उन्हीं पर फिल्माया गया

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम है दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए, ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
0: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सभा के प्रसारण मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बज चुके हैं, हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।